एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

से आजम का फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से देखो हाथ में दामन है किसका।

वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। अराओ बाजार मुस्तफा को चले, ये खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। इनामुल्ला खान साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में इस नगमे को पेश किया है। एंड माशाल्लाह हमारे फैसल आदम कलंदरी अली साहब माशाल्लाह ये कवाली के मास्टर है। ही लव्स इस कवाली दिस मैन एंड हिज एंटायर फैमिली, दे आर रियली इन लव विद कलाम्स। एंड माशाल्लाह ये उन लोगों में से है जो बड़ी बेहतरीन अंदाज में सुनते हैं। माशाल्लाह शुक्रिया जनाब फैसल आदम कलंदरी अली एंड मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। और साथ में हमारे रिदवान इस्माहील साबरी साहब भी इस प्रोग्राम को समाज फरमा रहे हैं। नजीर खान चचवित के रहने वाले हैं, असलम सुलेमान केप टाउन, एंड ऑफ कोर्स बाबू गौर अशरफी, अनदर मैन दैट नोज़ हिज उर्दू वेरी वेरी वेल इज आल्सो ट्यून्ड इन टुगेदर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑफ द नारायण स्वामी कोल्हापुरी, नारायण स्वामी कोल्हापुरी ऑफ क्लूफ, ए मैन दैट रियली एंजॉयज हिज कवाली। और साथ ही साथ इंडीड you know, this weekend I was blessed over the Qurbani weekend. I happened to be in Glencoe and mashallah, a family out there that has really bent over backwards to accommodate me over the years. And alhamdulillah, you know, the young man there, Tasadduq, his younger brother, Muzammil, both the spouses, Samira and Razia, not forgetting Banu and Nuri, the sisters, and of course, Mom Shireen, and every member of this family. Sadly, some of the elders have left this world for the world beyond. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But the legacy that these young sons of ours are carrying forward, alhamdulillah, it's second to none. They are also listening through. And I want to say shukran to them, to, of course, Tasadduq, Muzammil, and every member of the family for the muhabbah that you gave us whilst we were there over the weekend. And also listening to us this evening is Abu Bakr Kikia. Sadly, he's got health problems, and we make dua that Allah Rabbil Izzat grants him Kamila, Shifa Kamila, inshallah, Aziz. And I'm sure that him and his entire family, of course, our duas are with them as well. To lijiye ab Hazrat Ali Karamullah Wajal Kareem ki bekas panah mein chalte hain.

अली हक था अली ही रहेगा, हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, काबा भी है अली का, मदीना अली का है। और क्यों कर ना करे बंदगी उस बंदगी पे नाज, सजदा है फातिमा का, मुसल्ला अली का है। यस बहन फमीदा अली, यस अनडाउटेबली आई नो हाउ इट इज, मेनी ऑफ यू आर द लवर्स ऑफ द अहल बैत अतहर, बिलखसूस हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम के चाहने वाले हैं। और जैसे आपने कहा है अवर ब्रदर और द भाई फैसल Adam Kalandari Sahib is emotional at the moment listening to this kalam, and why shouldn't he be? He is a great lover of the Panjatan Park. Shukriya Behen Fahmida for sending me that message. And then we have Faisal and Wadia Muhammad in Cape Town, Abdul Munaf Botswana, our international listener, saath mein Colonel Rauf Sahab and Adnan also tuned in, Shahid Mia bhi is program ko samaat farma rahe hain, and we have Ismail Khan from Cape Town as well, and not forgetting Nazir Khan Chatsworth ke rehne wale. It's time for Qawwali and it's 9 PM on Lotus FM. Join me every Sunday evening 9 o'clock for Qawwali Hour. Aaiye ab hum Khaja-e Khajagan ख्वाजा अजमेरी अली रहमा की बेकस पनाह में चलते हैं और वहां तक पहुंचाने के लिए आ रहे मोहम्मद बंदा नवाज।

से खाजा आए हैं मुरे अंगना जी, जितने भी खाजा खाजागान के चाहने वाले हैं, मुझे यकीन है आपको यह कलाम पसंद आया होगा। नॉट फॉरगेटिंग माय गुड ब्रदर आउट द सत्तार रियो एंड ऑफ कोर्स हिज रिस्पेक्टेड वाइफ द बहन और बहन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर यू हैव रियली लव्ड दिस एंड थैंक यू सो मच अबास शेख ऑफ नॉर्थ बीच, वसंती इंद्रानी कानेगी, आवर रेगुलर्स ऑल्सो हैव ट्यून्ड इन टुगेदर विद मोहम्मद and Fatima Suleiman of Unit 9 in Chatsworth. Shukriya, Jazakallah for y'all's muhabba in tuning in and of course listening to the program. To aayye program ko aage badhate hain aur hum we're going to go to the darbar of Sarkar Sabir Pak Ali Rahma.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।